0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: பத்து மணி 42 நிமிடத்தில் கெட் செட் கோ நிகழ்ச்சியாக கேட்டுட்ருக்கீங்க. லாஸ்ட்டாக என்ன கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா, 1851 நிறுவப்பட்ட இந்தியாவின் இரண்டாவது பழமையான அருங்காட்சியகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். ஆன்சர் சொல்றதுக்காக நம்ம நேர் வந்திருக்காங்க. வணக்கம்.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ஹாய் ஸ்நேகிதியே, மகளிர் உங்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சி நிறைவா பாடல் கேட்கலாம். விஸ்வாசம் திரைப்படத்திலிருந்து மீண்டும் ஒரு இணையதளத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஆர்ஜி லாவண்யா.